की शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है मैं वो हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। मैं तत्क्षण तुम्हारा वध कर सकती हूँ, किंतु तुम इस शरीर के पिता हो। इस देह से पितृ हत्या का पाप करके मैं कर्म के बंधन में नहीं बन सकती। ना ही मैं किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। अब मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं। इस शरीर से जुड़े अपने सभी संबंधों का मैं परित्याग करती हूँ। प्रजापति, तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। महादेव अभी पत्नी विहीन रहे। समग्र संसार की रक्षा करने वाला भी अब जन्म नहीं लेगा। महादेव के क्रोध का भाजन अब तुम्हें बनना पड़ेगा प्रजापति। और केवल तुम्हें ही नहीं, पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा तुम्हारे इस दुष्कर्म का परिणाम। इस देह को जन्म देने वाली दात्री माता प्रसूति को मेरा प्रणाम। इस शरीर के सभी संबंधियों को मेरा अंतिम प्रणाम। अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ।

देवम। शिव शंकर भगवान की जय, प्रभु रामचंद्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हरि ओम, शांति शांति शांति।

जय श्री राम. वेलकम बैक टू राम कहानी. एंड टू सिराज जी ब्रिंग्स अ नाइस इलस्ट्रेशन एज ही राइट्स फॉर अस इन हिज दोहा. ही सेज राम नाम मणि दीप धरो जेह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाह रहो जो चाहसी विजयार. अ वेरी फेमिलियर दोहा दैट वी वर अफोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तुलसीदास जी वेरी ब्यूटिफुल ही सेज टू ऑल ऑफ अस. He says, install that luminous gem, the name of Ram, on the tip of the tongue, and you will be able to remove the inner darkness. And when he speaks of the inner darkness, friends, what is he speaking of? Kama, Krodha, Lobha, Mad, Ahamkar, as well as the outer darkness, which is that of the physical challenges and obstacles we have to face daily in our lives. So he very beautifully brings two important points. Those obstacles that are within us, that of kama, krodha, lobha, madha, ahamkar, and those

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति
1: भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स ऑफ 68 मेन रोड शुगोनस ऑपोजिट द शुगोनस मार्केट कॉल देम एट 6654103 फॉर ऑल योर गोल्ड सिल्वर डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स वेडिंग रिंग्स इयररिंग्स पेंडेंट्स एंड ट्रेडिशनल फिलिग्री आइटम्स कस्टम मेड ज्वेलरी बेरा स्पेशलिस्ट एंड ब्रांड नेम पेन्स फ्री एनग्रेविंग ऑन ऑल आइटम्स परचेस फोर जनरेशन सर्विंग द कम्युनिटी विद इंटेग्रिटी एंड प्राइड भागवत एंड सन्स ज्वेलर्स Check us out on Facebook at R. Bhagwat and Sons Jewelers and on Instagram.
2: The incredible India Export right opposite the Center of Excellence. Open daily from 10 a.m. to 8 p.m. Discover an amazing range of products from elegant bridal wear and sparkling jewelry to stylish footwear, exquisite furniture and authentic Indian cuisine. Experience the vibrant colors and rich flavors of India. All under one roof at the incredible India Expo. Don't miss out. It's your gateway to incredible finds.
3: Fab India Expo in Chaguanas is open every day from 11 a.m. to 9 p.m. Fresh containers have arrived with brand new stocks. Exciting new merchants have joined us, bringing a huge variety of products at unbeatable bargains. Indulge in spa services, soothing chumpy massages, and taste authentic Indian cuisine. Fab India Expo, endless variety, endless value.

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

के प्रमाण करके कथा रूप अमृत स्वाद केड़ा से शौनकते कहते भये हैं। किसी रीति से भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्ति होते ज्ञान किसी प्रकार अधिक होता है और वैष्णव आत्मा किसी भांति माया मोह परित्याग करते हैं। इस महागौर कलयुग के आने से संसार जीवों को उच्चत असुरो भाव को प्राप्त हो गए हैं। उस क्लेश को ग्रसित जीवो उद्धार करने वाले के

So this is ज्ञान और वैराग्य. वैराग्य कौन सा वैराग्य है? The attachment that is there. When we begin to cut down the attachment to material things and material and sensual things, by listening to the katha of the Lord. So this trio, bhakti, jnana aur vairagya. Jnana prakar se adhik hote hain. Jnana is foremost amongst them. Knowledge. Foremost amongst them. Aur Vaishnava Mahatma Purush kisi ki bhanti maya ki mohi parityag karte hain. And good souls in this world like you and I, the devotees of God, maya moha se, we become drawn into the maya, into the elusive world that God has created, and we become moha, we become deluded. How does one begin moksha parityag karte? How did they, what steps do they take? How do they begin to reform their lives? इस महागौर कलयुग के संसार को जीवों को चित असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं. दिस एज ऑफ कलयुग इज नॉट एन इजी थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड यू डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू शेयर दैट विद यू, जस्ट हैव टू लुक अराउंड एंड सी हाउ थिंग्स आर गेटिंग. थिंक अबाउट योर डेज व्हेन यू वर ग्रोइंग अप टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ. उस क्लेश को ग्रसित जीवों को उद्धार करने लगे हैं. हाउ डज द जीवो, द इंडिविजुअल सोल्स लाइक यू एंड आई, अपलिफ्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम क्लेश, from the torment and the difficulties that we experience in the pain, the problems, the worries, the hardships, everything that affects us, that causes us to turn away from God. Karke ke karma karna chahiye. Tell me Lord, how does this sutis, Shaunak is asking. Jo kushalo kushan pavan ko pavan sa prakar ko भगवते की भक्ति को करने वाले साथ टेल मी द मोस्ट प्यूरिफाइंग पावन की पावन अमंग्स प्यूरिफाइंग थिंग्स इवन दैट व्हिच इज मोस्ट प्यूरिफाइंग. इस प्रकार भागवत को भक्ति को करने वाले साधन को से टेल मी व्हाट द ब्यूटीफुल भजन दैट वी सिंग सम टाइम योर पीपल. भक्ति के साधन करके वैकुंठ तुम्हारे हो, वैकुंठ तुम्हारे आनंद फॉर यू टू सिंग दैट.

ने मुझे आपसे बहुत फो लॉर्ड इतना तो करना स्वामी वंडा टाइम कौन लॉर्ड इतना तो करना जब प्राण तन से निकले जब प्राण उस प्राण को जो श्वास में श्वास श्वास में लाम ही